बहुत क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि क्या हुआ है।